नत पालवे एवड करी विथार को सगली धरती हकी जाई तोली धरत आकाश दोए पिछे शाबे टंक चढ़ाई एडी करामात दा मालक बन जावे धरती ते आकाश नू तोल के दस देवे उचारण करो श्री वाहिगुरु ए बल रखा आप विच फिर ए बल अपने विच भी होवे चे जिदे सिर ते हाथ रखे ए बल उदे विच भी आ जावे एडी वड्डी समर्था दा मालक बेशक कोई बन जावे ते हजूर कहिंदे नु बिना नाम तो ए सत नाम बिन बादर शाही एक बदलां दी छां है जिहड़ी कदे एक थां ते टिकदी नहीं जिदी कोई वैल्यू नहीं हुंदी इसलिए हजूर ने कहा भाई ए कर्म धर्म पाखंड जो दीसें तिन जम जागाती लूटै आख्या जे मनुच्छा जन्म सफल करना है ता निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै ऐसे सच दे बचन जदों सिद्धा ने सुने मन नू हलूना वज्या ता फिर ओही सिद्ध जेड़े बड़े क्रोधित हो रहे सन गुरु नानक सच्चे पातशाह

इस संसार सागर विच किते मैं डुब ना जावां, इस संसार दे पदार्थां विच किते रुल ना जावां, इस लई तू मेरी बांह पकड़। क्योंकि असी कमजोर हां, असी पकड़िए हाथ छुट जाएगा, इसलिए मोको बाहां दे बीठला मेरी पकड़ो जीवा। जिवें भाई साहब नंद लाल जी ने अरदास कीती, सतगुर प्याल प्याला मैनू दिल दे रंगन वाला, होमन दूर मुश्किलां सबे थीवे मन मत वाला। जे अपने दर घर दा नाम दे देवे सानू, तैनू की फर्क पवेगा। साडा मन भी मतवाला हो गया तां फिर संसार वल क्यों खचित होवेगा। जे साडी बांह तू फड़ दवे तां फिर संसार विच लुभाए मान करन वालियां वस्तुआं साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकनगियां। इसलिए कर कृपा, सदा पकड़ो मेरी बांह, ऐथे ओथे जिथे किथे जिउंदे मोए असी तेरे हां। हे निरंकार मेरी बांह पकड़ ले, कृपा कर।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महा शिव जो करे। तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।

हसूर कहने ने गंगा अज समा मिले साथ संगत दी सेवा कर ली हसूर कहने ने गंगा असी भी अज अपने तन का चोला रंग ली मात गंगा जी ने आख्या पाछया तुहाडे चरणां ते जिहड़ा भी आके मत्था टेक लैंदा उहदा तन दा भी चोला रंगिया गया ते मन दा भी रंगिया गया नहीं गंगा अजे भी बड़ी भुख है मेरा चित करदा मैं हर

जिस तुम आप कराए। ते हुण तुसी दावा करके कह सकते हो जदों घरां जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या असी बैकुंठ क्यों।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कोई पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब का दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले लई इस गल तो जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हजूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जांदे। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकणा है ते सिंघासन ते विराजमान ने बाबा बुड्ढा जी तो पुछया कि बाबा बुड्ढा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया। आख्या ओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आए हो उते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। आके बाबा बुड्ढा जी ने पूछया पातशाह जोड़िया विच की कर रहे हो। संगतां दर्शन करने वास्ते आई हैं जोड़िया च की लभ रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहने बाबा बुड्ढा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए। मैं सुनिया कि जदों साध संगत कट्ठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा है। मैं सुनिया कि साध संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां गया सी कि किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां। हजूर दे नेत्रां च वैराग आ गए। अक्षय बाबा बुड्ढा जी सात संगत नूं कह दे थोड़ी देर होर रुक जा मैनू इस रस तों ना तोड़न गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया। जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता के धरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन।

सिमरन तो खाली ने गलना नाल आसमान ते चढ़ जांदे गलना नाल ही आसमान नूं थले ले आंदे कहंदन के जिहड़े सिमरन तो खाली ने कबीर साहब कहंदन उन्हां तो सदा डरदे रहिए।

आगम आगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

गुरु दे शब्द दे नाल गुरु दी कृपा द्वारा परमेश्वर प्राप्त होंदा है ते गुरु दे मिलन दे सदका ही परमेश्वर दी प्राप्ति होंदी है। गुरु तो बगैर उस परमेश्वर दी प्राप्ति नहीं।

जाना माथे तिलक मथे दे तिलक ला ले हाथ विच माला फड़ ले ते राम राम कह लिया थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए भगत जी कहंदे ने।

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध वेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध वेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध वेच के जद वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहे है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नूं वापस मुड़ी जदू नदी पार करन लगी

लोग जेड़े ने ओ मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना पूजा करदा है।

कबीर बौरा है, ए कबीर बौरा है, ए पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

कपड़े नु रंग चाड़ो तो वो सारा रंग उतर जाता। इस तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नु वखरा वखरा करके समझदे ने, समझो उन्हां उते राम दा, अल्लाह दा, वाहिगुरु दा रंग चढ़िया।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़े ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदा, ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू राम ओनू वाहिगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहिगुरु कहंदा पर सारिया नू